Just

0: सच्चाई बहुत प्रिय।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: कितने बरसों से जुड़ा हूँ
1: अमृत वेले, अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको,
2: जितने बजे भी उठ सको
1: तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो।
2: उस बाप से आशीर्वाद लो,
0: जितने बजे भी उठ सको बाबा को याद करके
1: आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी जिसे खुश भी रहेंगे निर्विघ्न भी रहेंगे।
0: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो अभी ठीक, सब सब ठीक हो जाएंगे, आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो, मेरा बाबा कह के और शक्ति ले।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो न? कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो?
2: पीछे ही है इससे
1: इस कमजोर चार को समाप्त करो, फसो

एक क्वार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट सफल करने की भी जरूरत।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस
2: अपने मन की वृत्ति
1: भावना शुभकामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये भी विधि अच्छी बनाई है, हर सोन को चांस मिल जाता है। एक तो सेवा का, यज्ञ सेवा का, एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता भाव तो याद आता ही। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता

सकते कामन रीति से।

0: कोने का खाता जमा करने का और बड़ी वार बड़े ते बड़े बड़ी वार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है हर सोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए, कितना पुण्य का खाता जमा किया। सहज जात का प्रोग्रेस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र बनो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेहद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे
0: रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

एक बात बच्चों का सुन के हंसी आती है। पता है कौन सी बात?

Psst.

मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं। शूद्र जीवन के संस्कार हैं।

primera.

समय पर।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पुरुषोत्तम संगम योगी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा से मिलने तक पहुंचे हो, आगे क्या करना है? फॉलो फादर ब्रह्मा बाप। बाप दादा को भी बच्चों को देख करके खुशी होती है। वाह, बच्चा आ गया। सारे परिवार

0: भी कुछ भी हो वे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन अपने टीचर द्वारा उसका हाल करा देगा। दो दिन हो गया है, ऐसा है, ये नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो ना, पीछे रहना चाहते हो, आगे जाने चाहते, जाने का यही एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या, जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना, कि नहीं जो भी आए है, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज बड़ी चीज हो गई ना। Hold गोली चलाते भी है और रंग लगाते भी है। तो आप सभी सो

しちゃった。アプトチョパブ警察官、ワープ警察官。サビケテオナ。

0: Sabine.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी देवर गति का समय, देवर पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं।
2: Sota
1: सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अंतकाल, जय जवान है, जय बूढ़ा है, जय तंदुरुस्त है, जय बीमार, किसका भी कभी भी आ सकता है। से

some good luck Brahma Bab Saman Banana Arthat Frishta Banana Shiv Bab Saman Banana Arthat Nirakar Istiti Me से प्यार है ना जिसे प्यार है उस जैसा बनना जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है कोई मुश्किल

0: साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत है, लेकिन आप जैसा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये मिलन विचित्र है, सब इस बात में वाह वाह वाह कह रहे।

Marcitore. Voto. Api.

Şeyh Muhsin. Harba çakadırdı. Vap, vap, vap, vap, vira, vap.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहते हैं हंसाते हैं बाप दादा को, अच्छा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। नाम है से।

करना है, नहीं बोलना है।

世話。Fala.

fantasia teu.

Chiều chập cháu chế xì cháu cha cháu chỉ tên là sắp hết cháu.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

existe. Oscar.

Joke.

0: समर्पण दा महीन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी के लिए कहती है कि बीच बीच में समय निकाल के चाहे पुराने चाहे नए सभी को शरीर बनने का ट्रेंड जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में शरीर बनना ही पड़ेगा। तो ये ट्रेंड कोई के समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो ये एक मिनट शरीर बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय समझते हैं ना, समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय शरीर बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय समय जो भी निश्चित करो, एक सेकंड में शरीर आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं। ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी, नहीं तो हाथ देख करके नहीं चला।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी

0: जाती है, इसलिए सेवक का पलरा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआएं का खाता बहुत जमा करो। अपील की दुआओं का खाता आपके आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Bye.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप मुझे व्यर्थ को चलाओ, कहाँ कहाँ से चुन करके अपना बना।

0: נשרקו. מברמן סוף לסתם. תאמרת ולה चलते फिरते फरिश्ता रूप फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप रिश्ता बना फॉलो फादर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

और आपका उस पर वेद भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें जिसमें इंटरेस्ट भी आता है समाचार तो अच्छा है, संसार समाचार जैसे अच्छा लगता है।

सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता है, कोई सच्चा भी।

उस समय

सुनाओ
समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर सिर्फ चिप रहना पड़ता है। Awesome.

0: ही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने पेपर भी होते। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है क्या?
1: लगते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क।
0: और एक बात तरंग, वो एक बात है, पर उपकारी बनो, तीन प्रकार की पर को खत्म करो और एक
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों को

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होती है ना, वो ऐसे होती है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रही है लेकिन गायब, बोल भी रही है लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वो चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, सीरियस नहीं चेहरा करना। क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना, आता है। आपके चलचित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते है क्या? अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

अच्छा।

Monster.

आजकल के सब सिंगर।

Monster-Schirm.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

जैसे जाओ वैसे अभी अभी

Pero...

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

सबसे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बहुत दुखी है बाप दादा को, अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकारे अभी आवाज, पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे पुकारे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। सागर

ausfallen. Bina, Bina, Leitski. Kere Leido. Sa.

0: चिल्ली की
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावन हार आत्मा बन, कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी थी वर्क।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा, सदा साथ रहना। अच्छा धन मन धन बाप क्यों दे दिया ना, दे दिया है। अच्छा दिल भी दे दिए, दिल बाप को दिए। अगर दिल दे दिए तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं है, बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे। तो बताओ, दिल नहीं लगाना, बाप की अमानत। दिल आराम को दिल दे दी, दिल लगी की कहानियां बहुत आती। तो कुमार याद रखना, ऐसे तो प्रवृत्ति वाले भी या कुमार भी, लेकिन आज कुमारों का दिन है ना, तो बाप दादा ये अटेंशन दिलाते। कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हमारी दिल है ने बाप को दे दी, तो दिल कैसे लगेगी? कमजोर हो तो कमजोर दिल को यहां से मजबूत करके जाना। इसमें आज ही है वाकई के सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, कुछ भी हो जाए, जब बाप दादा से वचन कर लिया, कितने भी मुश्किल आवे, लेकिन फिर को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना, वचन लेना, इस बात को भी याद रखना। कोई आत्मा के आगे वचन नहीं कर रहे, परमात्मा के आगे वचन दे कभी।

0: Pi. एक मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी है, फिर भी दिल में एक मिनट वचन करो कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते, संबंध संपर्क मिला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए। लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने हो। कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते, बाप की तरफ कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंसेस है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को बुद्धि को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, क्या पहाड़ से मात्र टकराना है? ठीक ना क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेल की दुनिया, झमेले तो आएंगे, आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है तो वही आएंगे ना। आप एमिट का लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए? सिंटा पड़ी दे झमेला नहीं आवे ये नहीं सोच, झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Chicos.

见。

Red Sun.

बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, समझ जाएगा

खुश कर

0: Dingen var loco. Dingen fri. Ka eksempel dikhao. To wo bhi. Unko saara dikhai.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप को भी समझाने लगती है, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अभी तो हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चलना है, तो हम है साकार और आप हो आकार और निराकार, अभी साकार में कोई तो चाहिए। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ, एक चाहिए। जो पाप की आंखें उल्टी करेंगे नहीं करेंगे तो कहाँ करें। कोई स्थान तो बताओ ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारे है लेकिन मधुबन वालों से। एक बात का विशेष प्यार, वो क्या, मनसा, मैं याद तो सब करते हैं, योगी तो आत्मा है तो सभी है, अवश्य सहज बनाने का एक लिफ्ट है। वो लिफ्ट क्या है, जो भी मधुबन में आते हैं जैसे खाना बनाने वाले, जो भी कोई ड्यूटी करने वाली है, बाप दादा तो कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। क्यों? आते हैं वो ये वायुमंडल

जाते, चाहे खाने बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला, लेकिन मधुबन वालों को जान से Fuck. Oh.

0: Arrête. Bete jao, bete.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कोई बच्ची कहती है, बाप ने तो सर्वशक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो जाती है, फिर आती। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी, फिर भी समय पर नहीं आती, उसका कारण क्या? अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर नहीं हो, कोई भी शक्ति का आर्डर करते हो।

Está.

0: मास्टर सर्वशक्तिवान बने। तो इतनी पावरफुल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मधुबन निवासी अर्थात करम में मधुरता और वृत्ति में स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों और याद की पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने कम से कम 4 घंटे से होना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को समझो विजय दासी बनना, अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो स्थूल गिफ्ट भी बहुत मिलती है समाधोवन को।
2: जाएंगे तो बहुत,
1: और कितना सम्मान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं। मधुबन वाला है, मधुबन वाला है। तो इतना अपना सम्मान सदा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की कठिनाई बड़ी वर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्जो क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है। इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रैम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्राह्मणों का काम के शोक लगाना भी के मेहनत है के योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचती है, पाप की महिमा के ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना? मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ, सहजे ना सहजे कान तो हिलाओ, सहजे मुश्किल तो नहीं है ना? जान बूझ के सहज से हट कर मुश्किल में चले जाते हो। है मुश्किल नहीं? बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है। इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला? आप पीछे वाले मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे

0: मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Kusch grei. Abgehen. Kusch grei.

Yoga.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि सब buddy।

Pajak.

Dick.

sudden, oh,

Bart.

puppy. Up.

tombe.

perro.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: स्व की स्थिति में भी चार बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे दीवार पुरुषार्थ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे
4: जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड कर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

Wow, see.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी प्रमाण एक दो में अपनापन अनुभव कर, को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना? हर एक यही सोचो, सब अपने महसूस, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते, ये दिल की स्थिति।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने कहा सप्ताह के दो दिन विशेष, एक गुरुवार दूसरा विशेष वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान तो अनेक है लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख। चेक करो कि वरदाने दिन में वरदान स्वरूप बन, वरदान को रिपीट नहीं करना है लेकिन वरदान स्वरूप बनना है। और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप दोनों दिन देश, ये लक्ष्य और लक्षण सिर्फ लक्ष्य नहीं, लेकिन लक्ष्य के साथ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन

ich sonst sehe. हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होने चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन परिवर्तन भी है, ये चीज करो। अलबेलापन तो नहीं आता, हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान।

0: बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साकार में लाओ। फरिश्ता पढ़ने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाए। अपनी चेकिंग करो, सूक्ष्म रूप में भी लगाओ। कोई विशेषता या अपने या और किसकी अपमान तो नहीं है। कई बच्चों के छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाए। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Some boy.

Thanks.

Check.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

खेल के लिए। रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रेल करो और अपने अपने

बाप दादा 20% छुट्टी देते है मंसूर, मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्ची

दिलचस्प बताओ। हो सकता है 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, 15 दिन के फुल विजय मुश्किल है कि इजी है? इजी है, हाथ उठाओ। इजी है, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना। 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहे हैं, 20% छोड़ रहे हैं। क्यों बाप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखना कि किया हुआ संकल्प अभी भी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। शिवा के लिए एवरेडी चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए वरिटी है, लेकिन अभी सेवा में एडिशन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी समय परमान सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। माँ बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की वैराग आद से अंत तक रहा। कान से मेरा समझ कर पर्सनल अपने वृत्त एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं सदै बच्चे अन्य अन्य बच्चे भी बेहद का वैराग रहा। सेकंड में उपराम फिरती का बेहद के वैराग का सबूत देगा। एक ही लगन सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपरांत

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है के अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दोनों को। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आश कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, किम्या के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनों को भी मांग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी माओ को भी देखते। बाप नजर में है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कैसा भी कर सकती है। इसलिए आप चांस देने वाले बनो।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ज्वालामुखी योग

0: टेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद चाहते तो सभी बाप दादा आज शिकले

big, minute, powerful, Atma Bala.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्योंकि चाहो नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। इसलिए बनना ही पड़ेगा, मंजूर है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हैं, जानते हो ना साधन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा चारों ओर की लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सने में समाया हुआ, ये परमात्म सने
2: सने की

to say something.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वो ही संस्कार है। उस समय सोचो ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? Wow.

是Bob Saman Bernega or Lakshan Ray.

मिक्स हो जाते हैं ना अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, संस्कार बन जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं, माया अकेले करने की कोशिश।

Legend.

0: जो रावण का खजाना है ये पाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार
1: Joe.

ちょっとライン。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सबके आगे अपना अनुभव सुना। नास्तक से आस्तक कैसे बना, बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारियां देती है, ब्रह्मा कुमार देती है, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोल निकले। अगर एक पॉइंट रही हुई है गीता का, भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होंगे ना। जब ये सिद्ध हो तब कहे भगवान आ गया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

करती है।

0: Por si que
1: Shiver Bunch.

Nasıl sıram?

Sick.

Bimbo Lagrim.

It is, sorry, it is. Tortoise. Rose.

en tus abdomen.

सब क्वेश्चंस का

Sleepy.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्रह्मा कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को भ्रमण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया

0: शक्ति दे तो समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं की साधारण कर्म शुरू हुआ। समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ न करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ

0: जैसे हतक के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिक बन के चेकिंग को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है खुशी के अनुभूति होगी। और रिजल्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: विशेष

Tus labios.

Sí.

me.

विशेष पाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध

چند بودی کرده.

वचन करम संबंध

संतुष्ट रहने में इसी।

Célébrement.

0: शरद का समय, बहुत थोड़ा है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे अभी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सब ठीक आराम से रहे हुए हो? मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? है? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या जी? नाचो गाओ, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? ऐसे अच्छा नहीं, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? दिल में खुशी है ना, तो खुशी का चेहरे पर आता है मुस्कुरा। मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कुराना सिखाओ, ठीक है ना? अच्छा अच्छा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sofía Fígaro.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस, सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा या वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ, तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई आपसे पूछे

0: esa hanno poca reona abijanteo or apkoi espiarca anbowel que hamare dilme paprete
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ उठाने में तो होशियार नहीं, बाप दादा खुश है, खुश है। हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा। जरूर मदद मिलेगी, सिर्फ इच्छा रखो बस। पढ़ना ही है, करना ही है, पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ बाप दादा खुश होते हैं। कोई कोई बच्चा अभी भी से कम जो रेगुलर आने वाले है, उनों को तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य है। ऐसे नहीं है, नहीं की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में थोड़े ढीले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Master।

time lagging. कर सकते हो ना, अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, करो नहीं लेकिन कर सकते हो ऐसे। Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yes.

0: परसेंट वेस्ट है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Awesome.

क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है।

0: 就是的。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि बेशक से पूछेंगे कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही, बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में इष्ट देव बनना, तीनों ही संस्कार भी नहीं चला।

0: affecto fue harta de tristiti os tristique fel pavarse apna pot sarva sane sarva samrat sarva karya karta nemetor nirman isme brahma bhav ko pura pura falo karte hue सारे ब्रह्मांड परिवार में शक्ति बड़ी और बाप दादा किस अपने दादियों के साथ साथ रह के बहुत अच्छा पाठ बजाया अभी भी सुखी मैं आपके साथ पाठ बजा रही बाप दादा भी दादी के कमाल का थे सबको संगठन के बंधन में सने और सहयोग के आधार से बांधा और ये अमर वरदान सबका प्यार अच्छा है ये देख करके भी बाप दादा को खुशी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Peace।

0: बच्चों के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। आप विश्व में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सफलता सदा एक एक बच्चे

alto.

0: ज्यादा सफलता स्वरूप हूँ। ये आज के दिन का बाप दादा का वरदान, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ये सदा स्मृति में रख, तो जो भी कुछ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: See you.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Something.

sub.

Ciao.

awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस मोटे रूप से

Eskilistö. Apos me. Say it now.

0: Son Carla Coffee. Srishta
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी मत किया क्या हम अब से 108 के माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रोल ध्यान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं बाप ने आप सबके उमंग भी बहुत

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर पल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Chama-te, oi.

Little one.

Vad vågar jag?

Ciao.

श्रेष्ठ कर्म के कलम से कीजिए।

Shut Moki. Avanashi. Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक सर्विस तो करते हो, वो तो कहने की बात नहीं है, अच्छी कर रही है, करते रहेंगे, लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते। ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वो लिस्ट, अच्छी अच्छी है लिस्ट में, जो नाम पाला कर सकते।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चले

Yeah.

么笑。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे तीन दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे एक दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य, लक्ष्य एक, समय एक और चारों ओर देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रख। लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का। सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया जाए प्यार का, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, आचार करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप भी